0: with members of the Indian contingent that participated in the 2026 Asian Games concluded in Japan earlier this month. He described the recent Asian Games as memorable for India, highlighting the outstanding performances of Indian athletes across several sporting disciplines.
1: साथियों इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड शूटिंग में शानदार प्रदर्शन बॉक्सिंग में कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल
0: India finished fourth in the medal tally at the 2026 Asian Games in Naichi, Nagoya, Japan, winning 85 medals, including 21 gold. The 12th session of India-Japan Joint Working Group on Roads and Road Transportation Sector was held today in New Delhi. The Ministry of Road Transport and Highways said that the meeting provided an important platform for strengthening bilateral cooperation in the road transportation sector between the two nations. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi unveils development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh, says Union Territories development remains a key priority for centre. Supreme Court issues notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and others on protest march to Apex Court over alleged SIR irregularities. Also seeks poll panels reply over alleged voter deletions. Defence Ministry signs contracts worth over 4,000 crore rupees for GSAT-7C communications satellite and Varunastra heavyweight torpedoes. Government mandates caller name display for telecom users from 1st of next month. Sensex climbs over 2% to close at 74,316. And Prime Minister Modi interacts with India's Asian Games contingent in New Delhi, says country is poised to emerge as a global sporting powerhouse. That is all in the news at 9. Good night.
2: நேரம் 9:15 ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி நிலையம் திரைகானம் அளிக்கும் நேரம் இது முதலில் வசந்த மாளிகை படத்திற்காக டி எம் சவுந்தரராஜன் பி சுசீலா